0: نوديها 2 ميجا هرتز تبقى هي اف ام.
1: आयला तेरे जे मसल तंग हल्लु कुरंग आयला बेरु मीह का वाहक देखूंगे बदलगा आयला तेरे एकक अनेकक वाहक दक्का कंत तंग हल्लु कुरमुंग आयला तेरे ए उन्न गुलुंग रंगलुवे हरदनावे गिंदाने
2: उफावर मुस्तकबल का हरदना आयला है।

best. Tea time request. मैं हरगड़ी हतरगड़ी थीरीज फर्स्ट मिनट थीरीज हा मिनट मी हिंगणी और मैं मिगड़ी कुरिया मिगेंदनी टी टाइम रिक्वेस्ट अद मे दुगे मी शोगा मा कुरिम वेस दंडवाल गोता बाय मेसेज तन लिबेमुंग एबदे लिबेमुंग दा मेसेज तन और दंडवाल देमुंग दान देन शोगा बैविरवां बेनुंग कम वान मा नन्नोट कोल्ली मा मैं गुला लान बिफोर लिबिफोर मेसेज गम्यती अस्सलाम अलैकुम आशिदा किहिनेत हाल आशिदा मा वर रंगल मी दोसर की मुड़ी राज्य वर्ल्ड कप के फोरी दोसर का वुमा एकु मिकोलुग स्मिति भी वर फोरी गद को तैयार वेगें मी इतुर फोरी गद कोलुमा वर्ल्ड कप के रीति लवें अडो हालं बेनु मी फहारु गे लवता होगे तेरें लवे जहाल देती वर्ल्ड कप के फोर राज्य गवेस हम मुड़ी दुनिया गवेस मिहार में ती तिबना हिंग हम मी हिफा लाफ दें हास को मी फोर इतुर वेगे मी दने मी गोता हम को मैं हर कुछ मी निर्मुन दा लवत का एक ही गा मी फहार निर्फ वा लवत हो गे तेरे लवे अले जहा लदे ना उम्मीद कुरम हम इतुर फोर गद वाणी का मंगे ती कोलोगे दें मी मी वगुत को एक मको मेचे कुरिये कंडू दे हे नमवे सम मी वर्ल्ड कप के वाहक तक आदि मी एवं तो सम वर्ल्ड कप के वाहक तक मी देखे उमदनी एहम मी ति वाहक तक वे सितुर फोरिय अन्नानी कम मी उम्मीद करनी मी जेहाल दे लवे मी फॉर मी गनेस्ते लवे गे नमकी इको

0: नो दी है के मेगाहर्ट्स दी वे ही एफएम मगरिब नमाज वक्त
1: अल्लाहू अकबर अल्लाह

0: घर कैसा लगा?
1: अच्छा।
0: और घर वाला?
1: मम्मी जी प्याज फूड प्रोसेसर में ग्राइंड कर दो।
2: रहने दो, तुम्हारे पापा जी को चटनी भी सिलबट्टे की चाहिए।
3: तुम्हारी सास कह रही थी कि खाना बनाते वक्त तुम्हें चुगने की आदत है।
2: सब्जी काटने के साइज से उसके स्वाद का पता लगता है।
1: मम्मी हल्दी दही में डालनी है या तड़के में? कैसा बना?
4: नमक कम है।
1: हेल्प नहीं है मम्मा कोई, दिवाकर काम से आके थक जाते हैं और यहाँ काम खत्म ही नहीं होता।
3: ये सब तो सीखना पड़ेगा ना रिचू।
0: हो गया?
1: अभी वो बर्तन बचे हैं।
4: बहू को घर संभालना तो सिखाना पड़ेगा ना।
5: कम से कम उसको डस्टिंग तो अच्छी तरह करने के लिए कह दीजिए।
6: रिचा बेटा।
0: रिचू
1: ला रही हूँ।
7: कोई पैशन तो हमारी रिचा को भी बहुत है।
1: मैं डांसर हूँ।
0: हॉबी को जॉब कौन बनाता है?
1: मेरा खुद का डांस ग्रुप भी है।
4: जॉब के लिए तो मैंने मना किया था ना बेटा।
0: बेटा आपकी मम्मी ने PhD की है, मगर घर और बच्चे बस प्रायोरिटी रहे।
8: मैंने बोला था ना वीडियो डिलीट करने को।
1: पुराने वीडियोस को दिलाकर
8: इस घर में रहना है तो उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे।

0: भूल करके अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भुला देना, लेकिन भुलाना सिर्फ भूल को, गलती से भी हमें ना भुला देना।
1: मी कौन फिल्म में गई मैंने डायलॉग है मिसुअल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोर को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दो होगे मेंदम पार गड़ सु मिनट कौम में हफ्ता एक वस्कुरी एक गेंदा बालालन साड़ी मिशो के गेनेस दे केस्त डायलॉग के एम में गिनस वालतो के जवाब रंगल कुरा बैवरे का महा को इफारो नगा गुरातुं खास हादिया एली बेने एम में गिनस वालो के जवाब रंगल कुरा बैवरे नगानी कौम में महे गिवस एम में फाहुशोगा
2: केस्त डायलॉग ದುನಿಯೇಗಾ ಬೈಫಾರು ಎವ್ವಾಹಕೇನ್ ಎತಕೆ ಜೀಲ್ತಕೆಗೆ ಬೆಲುಂತೆರಿನ ಎಮಿಹುನಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿಗೊತಕ ಫೆನ್ನಾನೆಹೆಂ ಬದಲು ಕುರೇಮುಂ ಆದೆ ಅದಿ ಮಿಕಂಗೆ ಸಬುಂ ಎವ್ವಾಹಕೆ ತಫಾತು ನಜರಿಯಾತಕುಂ ಹುಷಾಳದೆ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಶೋಗೆ ಎಹಾರ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಬ್ಯಾಗ ಮಿ ಬಲಾಲನಿ ಮಿಫದ ಫಿಲ್ಮಕ
3: ಏರಾ ಮಿಹಾರು

0: भूल करके अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भुला देना, लेकिन भुलाना सिर्फ भूल को, गलती से भी हमें ना भुला देना।
1: मी कौन फिल्म में गई मैंने डायलॉग है? मिसुअल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोर को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दो होगे मेंदम पार गड़ सु मिनट कौम में हफ्ता एक वस्कूरी एक गेंदा बालालन साड़ी मिशो का गेनेस ते केस्त डायलोग गे एम में गीन सुवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवरे का महा को इफारो नगा गुरातूं खास हादिया एली बेने एम में गीन सुवाल के जवाब रंगल कुरा बैवरे नगानी कौम में महे गिवस एम में फाहुशो का
2: केस्त डायलोग ಗೆ ಶೋಗವಿಸ್ ಹಂದಾನು ನುಫಿಲಾಫದ ರೀತಿ ಹಿಗ್ಗಾ ಮದಿ ಬಲಾಲನ್ ಸಳಿ ಇತುರು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಗೆ ಮೌಲು ಮಾತ್ ಕೆನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಿವಗುತ ತಿಯೇ ಹುಂತೆನ್ನ ವಾಕಿ ವಿಲಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಯ ಹುಂತೆನ್ನ ಬಾಜವಿರ್ ವಗುತ್ ಕುಳಕಂಗೆದೆ ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೇಕುಂ